0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो 14वें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दुखद संदर्भ में और उसके बाद जो पुनर्निर्माण हुए, संत पापा पियूस 11वें की शिक्षा ने सामाजिक धर्म शिक्षा के विकास में एक विशेष सहयोग प्रदान किया। यह विशेषकर उनके ख्रिस्त जयंती रेडियो संदेशों में, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य को रेखांकित किया जो न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की पहचान पर आधारित था। उन्होंने इस बात की पहचान की कि अत्यधिक आर्थिक असमानता देशों के मध्य युद्ध भड़काने के मुख्य कारणों में से एक है। इस संदर्भ में 3 दिशा निर्देश हमारे समय में खास हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक शक्ति के नए रूपों को बढ़ाती असमानताओं को चिन्हित करती है। कानून को हितों से ऊपर रखने की जरूरत, इस बात की सचेतना कि आर्थिक असमानताएं हिंसा और तनाव को जन्म देती हैं, संघों में नेटवर्क की आवश्यकता जो व्यक्तियों और देश के बीच मध्यस्थता स्थापित करने के योग्य होती है। ये दिशा निर्देश हमें महत्वपूर्ण मापदंड प्रदान करते हैं जो हमें सामाजिक धर्म सिद्धांत के वैश्विक आयाम को परिभाषित करने और एक न्यायपूर्ण तथा शांतिमय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न करने में मददगार होते हैं। श्रोताओं, कलिसियाई सामाजिक धर्म शिक्षा के नए काल की शुरुआत संत पापा योहन 13वें से हुई, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर सामाजिक मुद्दों और अधिकारों की भाषा के एक नए आयाम को जोर दिया। मातेर ए मजिस्ट्रा में उन्होंने ख्रिस्तीय विश्वास को एक ज्योति के रूप में प्रस्तुत किया जो स्वर्ग और पृथ्वी का मेल करा सकती है। उन्होंने इस बात की याद दिलाई कि कलिसिया की मुख्य प्रेरिताई पवित्रीकरण और अनंत चीजों की घोषणा करनी है। वह लोगों के दैनिक जीवन में ठोस बातों को नजरअंदाज नहीं करती है और वह अपने को लोगों के हर असल भलाई से चिंतित पाती है। मानवता की एक एकतामयी दृष्टि पर आधारित संत पापा योहन 13वें ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक जीवन नागरिकों और समूहों की पहल के मध्य एक संतुलन की जरूरत है जो अपने में व्यवस्थित एक साथ कार्य करने को बुलाए जाते हैं, और राज्य के कार्य को चाहिए कि वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्वों का हनन किए बिना उनकी देखरेख और सहयोग करे। अतः उन्होंने कार्य के लिए उचित वेतन, कार्यकर्ताओं की सहभागिता और देशों के मध्य असमानता की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कुछ सालों के बाद पाचिम इन 13 संत पापा जोन 13वें ने पहली बार न केवल विश्वासियों को बल्कि सभी नेक दिली लोगों को संबोधित करते हुए व्यक्ति की गरिमा को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की मान्यता से जोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज के लिए एक दिशा निर्देशन का सुझाव प्रस्तुत किया जो सत्य, न्याय, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित था। वर्तमान समय जहां हम युद्धों के विस्तार और नए रूप में वैश्विक परस्पर निर्भरता को पाते हैं, उनके विचारों की विशेष महत्वपूर्णता बनी रहती है। वैश्विक परिदृश्य में उनकी अपील, मानव अधिकारों के संबंध में उनका साझा कार्य और उनका विश्वास कि स्थायी रूप में बने रहने वाली शांति संस्थानों और लोगों के मध्य संबंधों की मांग करती है जो कि हर मानव के सम्मान से प्रेरित है। श्रोताओ, द्वितीय वैटिकन महासभा कलिस्से को समकालीन विश्व में अपनी समझ के संबंध में एक नया मोड़ प्रदान किया। प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस में धर्म सभा ने कलिस्से की एक निशानी को प्रस्तुत किया जो मानवता के निकट रहती, दुनिया के संग अपने को संलग्न करती और अमूर्त विचारों के बदले इतिहास की ठोस सच्चाइयों पर चिंतन करने हेतु अपने को समर्पित करती है। हम इसके पदों में विवाह और परिवार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन, राजनीतिक समुदाय, युद्ध और शांति के वृहद मुद्दों को संबोधित होता पाते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक और संस्थागत संरचनाएं सिर्फ उसी हद तक सही हैं जहां तक वे व्यक्ति के पूरे विकास में मदद करें और सभी की जिम्मेदारी में सहभागिता को बढ़ावा दें। धर्म सभा की सामाजिक धर्म शिक्षा की महत्वपूर्णता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वह अपने विषयों से संबंधित बिंदु पर विचार हेतु अपने क्षितिजों को खुला रखे, बल्कि आत्मपरक हेतु उसका तरीका जो हमें ऐतिहासिक परिवर्तनों को सुसमाचार और मानव विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के दिशा निर्देश अनुसार परिभाषित करने हेतु निमंत्रण दे। यह शैली हमारे लिए इस बात को व्यक्त करती है कि विश्व के संग वार्ता करना कलिस्से के लिए कोई रणनीति विकल्प नहीं है, लेकिन यह उसकी प्रेरिताई की एक ठोस अभिव्यक्ति है, क्योंकि सुसमाचार जैसे कि खमीर अपने में समाज की संरचनाओं को अंदर से परिवर्तित करने और उसके मांगों को एक वृहद मानवता हेतु बढ़ाने के योग्य बनाता है। डिग्निटातिस ह्यूमाने की घोषणा को हम इस संदर्भ में लागू कर सकते हैं जो मानव सम्मान पर आधारित है, जिससे नियम के आधार पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को उनके अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करने या उन्हें निजी या सार्वजनिक रूप से सच्चाई की खोज करने और उसे मानने से रोका जाता है। यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक धर्म शिक्षा के सिद्धांत को व्यक्तिगत और विभिन्नता वाले शांतिपूर्ण समाजों की सुरक्षा हेतु सुनिश्चित करने में निरंतर बढ़ावा देता है। श्रोताओं, संत पापा पॉल छठवें के परम धर्माध्यक्षीय काल के दौरान शांति की समझ इस रूप में उभर कर आई जिसे सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति स्वरूप नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इसे संपूर्ण मानव विकास के आधार पर देखा गया। पॉपुलरुम प्रोग्रेसियो में विकास को उन्होंने कम मानवीय स्थिति से जीवन के लिए अधिक मानवीय स्थितियों के रूप में चर्चा की। इसे उन्होंने आगे एक प्रक्रिया के रूप में समझा जो हर व्यक्ति और संपूर्ण व्यक्ति के विकास की चिंता करता है, अर्थात व्यक्ति का हर आयाम और बिना किसी अपवाद के सभी लोगों का। यही कारण है कि संत पापा पॉल छठवें ने विकास के इस स्वरूप को सच्चाई के रूप में समझा जिसकी संज्ञा शांति के रूप में दी गई, क्योंकि यह अन्याय और संघर्ष को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखता है और सबों के लिए एक अधिक सम्मानजनक अवसरों को उत्पन्न करता है। परम धर्म पीठीय समिति यूस्तातिस एत पक्स न्याय और शांति को इस आलोक में देखने की जरूरत है जो इस विचार को कलिस्से के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करती है। साथ ही अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ते अंतर को ध्यान में रखने की जरूरत है और ऐसे नीतियों की आवश्यकता जो सही में सबों के लिए ज्यादा मानवीय जीवन जीने की स्थिति को प्रोत्साहित करती हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 1 सितंबर को सृष्टि के लिए विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर पोप लियो 14वें कस्तिल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी की माता मरियम के उद्यान में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। ख्रिस्त्याग शाम 6 बजे शुरू होगा। यह ख्रिस्त्याग सृष्टि की देखभाल के लिए हर साल मनाए जाने वाले प्रार्थना दिवस एवं सृष्टि के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो प्रार्थना और हमारे आम घर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता की एक ख्रिस्तीय एकता यात्रा है। सृष्टि के मौसम का यह समय 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस असीसी के पर्व एवं उनके निधन की 800वीं सालगिरह पर समाप्त होगा। इस मौसम में कलीसिया और दूसरे ख्रिस्तीय समुदायों को प्रार्थना, मन परिवर्तन और सृष्टि की देखभाल के ठोस कामों के जरिए दुनिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता फिर से जगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। पोप लियो 14वें ने इस अवसर पर प्रकाशित अपने एक संदेश में लिखा, आज हम सृष्टि की देखभाल के लिए विश्व प्रार्थना दिवस मना रहे हैं। यह सृष्टि के मौसम की शुरुआत है, जिसे विभिन्न ख्रिस्तीय समुदाय मनाते हैं। इस साल इसकी विषय वस्तु है जीवित जल। संत पापा ने आगे लिखा, जैसा कि मैंने इस दिन के संदेश में याद दिलाया है, हमारे आम घर की देखभाल के लिए हृदय परिवर्तन की जरूरत है, ताकि जो चीजें तबाही लाने के लिए इस्तेमाल हुई हैं, उन्हें जीवन की ओर मोड़ा जा सके। मैं सभी को प्रार्थना एवं कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि हम ईश्वर की शांति के जीवित जल के माध्यम बन सकें और हमारी घायल दुनिया को तरोताजा कर सकें। पोप लियो 14वें ने सितंबर माह के लिए अपनी प्रार्थना की प्रेरिताई में पानी की देखभाल के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है। पोप की सितंबर माह की प्रार्थना हमें पानी को ईश्वर के वरदान एवं बिना किसी सीमा के सभी के लिए अधिकार के रूप में देखने हेतु प्रेरित करती है। पोप ने अपनी प्रार्थना में पानी को फलदायी, ताजगी और उम्मीद का स्रोत बताया है, जो लाखों लोगों के लिए एक दुर्लभ, असुरक्षित एवं पहुंच से बाहर की चीज हो गई है। यही कारण है कि पोप लियो 14वें सितंबर महीने के लिए अपनी प्रार्थना को पानी की देखभाल के लिए समर्पित कर रहे हैं, जब सृष्टि का मौसम शुरू हो रहा है। अपने प्रार्थना नेटवर्क के माध्यम से पोप विश्वासियों एवं सभी भले लोगों को अपनी प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि लोग पानी को आभार, न्याय एवं जिम्मेदारी के साथ बचाना सीखें और इसे बिना किसी सीमा के अधिकार मानें। अपनी प्रार्थना में पोप लियो पानी के वरदान के लिए जीवन के ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, जो उनकी कृपा एवं प्यार का प्रतीक है, जो बपतिस्मा के माध्यम से हमें नया बनाता है। संत पापा माफी मांगते हैं, क्योंकि इसे एक चीज बना दिया गया है और हम भूल गए हैं कि यह एक विश्वव्यापी उपहार है, बिना किसी सीमा के सभी लोगों के लिए। वे उन भाई बहनों के लिए दुख व्यक्त करते हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है, जो इसे ढूंढने के लिए मीलों चलते हैं और जो इसकी कमी के कारण बीमार पड़ जाते हैं। पोप की प्रार्थना इन शब्दों के साथ समाप्त होती है, पवित्र आत्मा विश्वासियों को आवश्यक चीजों के तीर्थयात्री में बदल दे, जो सादगी से जी सकें, बर्बादी और प्रदूषण का विरोध कर सकें और हर व्यक्ति के बिना डर एवं बिना किसी भेदभाव के पीने के अधिकार की रक्षा कर सकें। कस्तिल गंदोल्फो में 31 अक्टूबर को एक मीटिंग के दौरान पीड़ा से राहत के लिए बने घर के निरीक्षक आयोग ने पोप लियो 14वें के साथ पिछले मई महीना में स्थापित होने के बाद किए गए कामों को साझा किया। पोप लियो 14वें ने 31 अक्टूबर को कस्तिल गंदोल्फो के प्रेरितिक आवास में कासा सोलिएवो देला सोफ्रेंसा या पीड़ा से राहत के लिए बना घर फाउंडेशन के निदेशक और निरीक्षक के लिए स्थापित आयोग का स्वागत किया। पीड़ा से राहत के लिए बना घर दक्षिणी इटली के सन जुवानी रोतोंदो में पेत्रोल चीना के संत पियो के सपने को साकार करने के लिए बना एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। आयोग की स्थापना 27 मई 2026 को पोप लियो 14वें

को धीरे धीरे कम करना गतिविधियां संस्थापक प्रलेख द्वारा कमीशन को दिए गए आदेश का हिस्सा है, जिसका मकसद अस्पताल सेवा को आगे बढ़ाना और इसके संस्थापक के करिश्मे को बनाए रखते हुए सतत स्थिति को वापस लाना एवं पुनर्स्थापना योजना को लागू करना है। पोपलियो ने कमीशन द्वारा अब तक किए गए काम को ध्यान से सुना और जो रास्ता अपनाया गया है उस पर करीब से चलने के उनके पक्के इरादे को पुष्ट किया। भारत में लातिन कैथोलिक कलीसिया के जीवन मिशन एवं प्रेरिता से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा हुई। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन और एशियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ के अध्यक्ष तथा गोवा एवं दमान के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ सीसीबीआई के उपाध्यक्ष एवं बैंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो, सीसीबीआई के महासचिव और रांची के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद एवं सीसीबीआई के उप सचिव डॉक्टर फादर स्टीफन अलाथरा भी थे। यह मुलाकात संत अगस्टीन के पर्व के दिन हुई, जो अगस्टीनियन धर्म संघ के संरक्षक संत हैं और जिससे संत पापलियो चौदहवें भी जुड़े हैं। सीबीसीआई प्रतिनिधियों ने पोप को पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित की। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने संत पापलियो चौदहवें को उपहार स्वरूप ओक की लकड़ी से बनी एक पार्टी का भेंट की, जिसमें येसु ख्रिस्त को भारत की कलीसिया से जुड़े 12 संतों से घिरा हुआ दिखाया गया है। पाटिका पर जिन संतों की तस्वीर है वे हैं प्रेरित संत थॉमस, प्रेरित संत बर्थोलोमियो, संत फ्रांसिस जेवियर, संत गोंजालो गार्सिया, संत जोसेफ वास, संत जॉन दी ब्रिटो, संत देव सहायम, कलकत्ता के संत तेरेसा, संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास चावरा, संत उफ्रेसिया और संत मरिया थ्रेसिया। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कहा, यह एक बहुत ही दोस्ताना मुलाकात थी और संत पापा हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो 14वें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दुखद संदर्भ में और उसके बाद जो पुनर्निर्माण हुए, संत पापा पियूस 11वें की शिक्षा ने सामाजिक धर्म शिक्षा के विकास में एक विशेष सहयोग प्रदान किया। यह विशेषकर उनके ख्रिस्त जयंती रेडियो संदेशों में, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य को रेखांकित किया जो न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की पहचान पर आधारित था। उन्होंने इस बात की पहचान की कि अत्यधिक आर्थिक असमानता देशों के मध्य युद्ध भड़काने के मुख्य कारणों में से एक है। इस संदर्भ में 3 दिशा निर्देश हमारे समय में खास हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक शक्ति के नए रूपों को बढ़ाती असमानताओं को चिन्हित करती है। कानून को हितों से ऊपर रखने की जरूरत, इस बात की सचेतना कि आर्थिक असमानताएं हिंसा और तनाव को जन्म देती हैं, संघों में नेटवर्क की आवश्यकता जो व्यक्तियों और देश के बीच मध्यस्थता स्थापित करने की योग्य होती है। ये दिशा निर्देश हमें महत्वपूर्ण मापदंड प्रदान करते हैं जो हमें सामाजिक धर्म सिद्धांत के वैश्विक आयाम को परिभाषित करने और एक न्यायपूर्ण तथा शांतिमय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न करने में मददगार होते हैं। श्रोताओं, कलिसियाई सामाजिक धर्म शिक्षा के नए काल की शुरुआत संत पापा योहन 13वें से हुई, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर सामाजिक मुद्दों और अधिकारों की भाषा के एक नए आयाम को जोर दिया। मातेर ए मजिस्ट्रा में उन्होंने ख्रिस्तीय विश्वास को एक ज्योति के रूप में प्रस्तुत किया जो स्वर्ग और पृथ्वी का मेल करा सकती है। उन्होंने इस बात की याद दिलाई कि कलिसिया की मुख्य प्रेरिताई पवित्रीकरण और अनंत चीजों की घोषणा करनी है। वह लोगों के दैनिक जीवन में ठोस बातों को नजरअंदाज नहीं करती है और वह अपने को लोगों के हर असल भलाई से चिंतित पाती है। मानवता की एक एकतामयी दृष्टि पर आधारित संत पापा योहन 13वें ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक जीवन नागरिकों और समूहों की पहल के मध्य एक संतुलन की जरूरत है जो अपने में व्यवस्थित एक साथ कार्य करने को बुलाए जाते हैं, और राज्य के कार्य को चाहिए कि वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्वों का हनन किए बिना उनकी देखरेख और सहयोग करे। अतः उन्होंने कार्य के लिए उचित वेतन, कार्यकर्ताओं की सहभागिता और देशों के मध्य असमानता की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कुछ सालों के बाद पाचिम इन 13 संत पापा जॉन 13वें ने पहली बार न केवल विश्वासियों को बल्कि सभी नेक दिली लोगों को संबोधित करते हुए व्यक्ति की गरिमा को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की मान्यता से जोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज के लिए एक दिशा निर्देशन का सुझाव प्रस्तुत किया जो सत्य, न्याय, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित था। वर्तमान समय जहां हम युद्धों के विस्तार और नए रूप में वैश्विक परस्पर निर्भरता को पाते हैं, उनके विचारों की विशेष महत्वपूर्णता बनी रहती है। वैश्विक परिदृश्य में उनकी अपील, मानव अधिकारों के संबंध में उनका साझा कार्य और उनका विश्वास कि स्थायी रूप में बने रहने वाली शांति संस्थानों और लोगों के मध्य संबंधों की मांग करती है जो कि हर मानव के सम्मान से प्रेरित है। श्रोताओं, द्वितीय वैटिकन महासभा कलिसिया को समकालीन विश्व में अपनी समझ के संबंध में एक नया मोड़ प्रदान किया। प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गॉडियम एट स्पेस में धर्म सभा ने कलिसिया की एक निशानी को प्रस्तुत किया जो मानवता के निकट रहती, दुनिया के संग अपने को संलग्न करती और अमूर्त विचारों के बदले इतिहास की ठोस सच्चाइयों पर चिंतन करने हेतु अपने को समर्पित करती है। हम इसके पदों में विवाह और परिवार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन, राजनीतिक समुदाय, युद्ध और शांति के वृहद मुद्दों को संबोधित होता पाते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक और संस्थागत संरचनाएं सिर्फ उसी हद तक सही हैं जहां तक वे व्यक्ति के पूरे विकास में मदद करें और सभी की जिम्मेदारी में सहभागिता को बढ़ावा दें। धर्म सभा की सामाजिक धर्म शिक्षा की महत्वपूर्णता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वह अपने विषयों से संबंधित बिंदु पर विचार हेतु अपने क्षितिजों को खुला रखे, बल्कि आत्मपरक हेतु उसका तरीका जो हमें ऐतिहासिक परिवर्तनों को सुसमाचार और मानव विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के दिशा निर्देश अनुसार परिभाषित करने हेतु निमंत्रण दे। यह शैली हमारे लिए इस बात को व्यक्त करती है कि विश्व के संग वार्ता करना कलिसिया के लिए कोई रणनीति विकल्प नहीं है, लेकिन यह उसकी प्रेरिताई की एक ठोस अभिव्यक्ति है, क्योंकि सुसमाचार जैसे कि खमीर अपने में समाज की संरचनाओं को अंदर से परिवर्तित करने और उसके मांगों को एक वृहद मानवता हेतु बढ़ाने के योग्य बनाता है। डिग्निटातिस ह्यूमाने की घोषणा को हम इस संदर्भ में लागू कर सकते हैं जो मानव सम्मान पर आधारित है, जिसे नियम के आधार पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को उनके अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करने या उन्हें निजी या सार्वजनिक रूप से सच्चाई की खोज करने और उसे मानने से रोका जाता है। यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक धर्म शिक्षा के सिद्धांत को व्यक्तिगत और विभिन्नता वाले शांतिपूर्ण समाजों की सुरक्षा हेतु सुनिश्चित करने में निरंतर बढ़ावा देता है। श्रोताओं, संत पापा पॉल छठवें के परम धर्माध्यक्षीय काल के दौरान शांति की समझ इस रूप में उभर कर आई जिसे सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति स्वरूप नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इसे संपूर्ण मानव विकास के आधार पर देखा गया। पॉपुलरुम प्रोग्रेसियो में विकास को उन्होंने कम मानवीय स्थिति से जीवन के लिए अधिक मानवीय स्थितियों के रूप में चर्चा की। इसे उन्होंने आगे एक प्रक्रिया के रूप में समझा जो हर व्यक्ति और संपूर्ण व्यक्ति के विकास की चिंता करता है, अर्थात व्यक्ति का हर आयाम और बिना किसी अपवाद के सभी लोगों का। यही कारण है कि संत पापा पॉल छठवें ने विकास के इस स्वरूप को सच्चाई के रूप में समझा जिसकी संज्ञा शांति के रूप में दी गई, क्योंकि यह अन्याय और संघर्ष को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखता है और सबों के लिए एक अधिक सम्मानजनक अवसरों को उत्पन्न करता है। परम धर्म पीठीय समिति यूस्तातिस एत पाक्स न्याय और शांति को इस आलोक में देखने की जरूरत है जो इस विचार को कलिसिया के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करती है। साथ ही अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ते अंतर को ध्यान में रखने की जरूरत है और ऐसे नीतियों की आवश्यकता जो सही में सबों के लिए ज्यादा मानवीय जीवन जीने की स्थिति को प्रोत्साहित करती हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 1 सितंबर को सृष्टि के लिए विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर पोप लियो 14वें कस्तिल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी की माता मरियम के उद्यान में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। ख्रिस्त्याग शाम 6 बजे शुरू होगा। यह ख्रिस्त्याग सृष्टि की देखभाल के लिए हर साल मनाए जाने वाले प्रार्थना दिवस एवं सृष्टि के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो प्रार्थना और हमारे आम घर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता की एक ख्रिस्तीय एकता यात्रा है। सृष्टि के मौसम का यह समय 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस असीसी के पर्व एवं उनके निधन की 800वीं सालगिरह पर समाप्त होगा। इस मौसम में कलीसिया और दूसरे ख्रिस्ती समुदायों को प्रार्थना, मन परिवर्तन और सृष्टि की देखभाल के ठोस कामों के जरिए दुनिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता फिर से जगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। पोप लियो 14वें ने इस अवसर पर प्रकाशित अपने एक संदेश में लिखा, आज हम सृष्टि की देखभाल के लिए विश्व प्रार्थना दिवस मना रहे हैं। यह सृष्टि के मौसम की शुरुआत है, जिसे विभिन्न ख्रिस्ती समुदाय मनाते हैं। इस साल इसकी विषय वस्तु है जीवित जल। संत पापा ने आगे लिखा, जैसा कि मैंने इस दिन के संदेश में याद दिलाया है, हमारे आम घर की देखभाल के लिए हृदय परिवर्तन की जरूरत है, ताकि जो चीजें तबाही लाने के लिए इस्तेमाल हुई हैं, उन्हें जीवन की ओर मोड़ा जा सके। मैं सभी को प्रार्थना एवं कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि हम ईश्वर की शांति के जीवित जल के माध्यम बन सकें और हमारी घायल दुनिया को तरोताजा कर सकें। पोप लियो 14वें ने सितंबर माह के लिए अपनी प्रार्थना की प्रेरिताई में पानी की देखभाल के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है। पोप की सितंबर माह की प्रार्थना हमें पानी को ईश्वर के वरदान एवं बिना किसी सीमा के सभी के लिए अधिकार के रूप में देखने हेतु प्रेरित करती है। पोप ने अपनी प्रार्थना में पानी को फलदायी, ताजगी और उम्मीद का स्रोत बताया है, जो लाखों लोगों के लिए एक दुर्लभ, असुरक्षित एवं पहुंच से बाहर की चीज हो गई है। यही कारण है कि पोप लियो 14वें सितंबर महीने के लिए अपनी प्रार्थना को पानी की देखभाल के लिए समर्पित कर रहे हैं, जब सृष्टि का मौसम शुरू हो रहा है। अपने प्रार्थना नेटवर्क के माध्यम से पोप विश्वासियों एवं सभी भले लोगों को अपनी प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि लोग पानी को आभार, न्याय एवं जिम्मेदारी के साथ बचाना सीखें और इसे बिना किसी सीमा के अधिकार मानें। अपनी प्रार्थना में पोप लियो पानी के वरदान के लिए जीवन के ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, जो उनकी कृपा एवं प्यार का प्रतीक है, जो बपतिस्मा के माध्यम से हमें नया बनाता है। संत पापा माफी मांगते हैं, क्योंकि इसे एक चीज बना दिया गया है और हम भूल गए हैं कि यह एक विश्वव्यापी उपहार है, बिना किसी सीमा के सभी लोगों के लिए। वे उन भाई बहनों के लिए दुख व्यक्त करते हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है, जो इसे ढूंढने के लिए मीलों चलते हैं और जो इसकी कमी के कारण बीमार पड़ जाते हैं। पोप की प्रार्थना इन शब्दों के साथ समाप्त होती है, पवित्र आत्मा विश्वासियों को आवश्यक चीजों के तीर्थयात्री में बदल दे, जो सादगी से जी सकें, बर्बादी और प्रदूषण का विरोध कर सकें और हर व्यक्ति के बिना डर एवं बिना किसी भेदभाव के पीने के अधिकार की रक्षा कर सकें। कस्तिल गंदोल्फो में 31 अक्टूबर को एक मीटिंग के दौरान पीड़ा से राहत के लिए बने घर के निरीक्षक आयोग ने पोप लियो 14वें के साथ पिछले मई महीना में स्थापित होने के बाद किए गए कामों को साझा किया। पोप लियो 14वें ने 31 अक्टूबर को कस्तिल गंदोल्फो के प्रेरितिक आवास में कासा सोलिएफो देला सोफ्रेंसा या पीड़ा से राहत के लिए बना घर फाउंडेशन के निदेशक और निरीक्षक के लिए स्थापित आयोग का स्वागत किया। पीड़ा से राहत के लिए बना घर दक्षिणी इटली के सन जुआनी रोतोंदो में पेत्रोल चीना के संत पियो के सपने को साकार करने के लिए बना एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। आयोग की स्थापना 27 मई 2026 को पोप लियो 14वें द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रलेख के माध्यम से की गई थी। मीटिंग के दौरान पोप ने आयोग के काम की प्रगति का अवलोकन किया, फाउंडेशन की आर्थिक और वित्तीय स्थिति के विश्लेषण पर ध्यान दिया और सन जुआनी रोतोंदो में कासा सोलिएफो देला सोफ्रेंसा अस्पताल की पुनर्स्थापना को देखते हुए इसके काम की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सबसे सही समाधान की पहचान की गई। आयोग ने अपनी गतिविधि का मार्गदर्शन करने वाली मुख्य प्राथमिकताओं के बारे बताया, स्टाफ के साथ संबंध को स्थिर करना,
इटालियन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ सहयोग को मजबूत करना, आवश्यक समाधान हासिल करना और प्रमुख उत्तरदायित्वों को धीरे धीरे कम करना गतिविधियां संस्थापक प्रलेख द्वारा कमीशन को दिए गए आदेश का हिस्सा है, जिसका मकसद अस्पताल सेवा को आगे बढ़ाना और इसके संस्थापक के करिश्मे को बनाए रखते हुए सतत स्थिति को वापस लाना एवं पुनर्स्थापना योजना को लागू करना है। पोप लियो ने कमीशन द्वारा अब तक किए गए काम को ध्यान से सुना और जो रास्ता अपनाया गया है उस पर करीब से चलने के उनके पक्के इरादे को पुष्ट किया। भारत में लातिन कैथोलिक कलीसिया के जीवन, मिशन एवं प्रेरिता से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा हुई। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन और एशियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ के अध्यक्ष तथा गोवा एवं दमान के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ सीसीबीआई के उपाध्यक्ष एवं बैंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो, सीसीबीआई के महासचिव और रांची के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद एवं सीसीबीआई के उप सचिव डॉक्टर फादर स्टीफन अलाथरा भी थे। यह मुलाकात संत अगस्टीन के पर्व के दिन हुई, जो अगस्टीनियन धर्म संघ के संरक्षक संत हैं और जिससे संत पापलियो चौदहवें भी जुड़े हैं। सीबीसीआई प्रतिनिधियों ने पोप को पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित की। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने संत पापलियो चौदहवें को उपहार स्वरूप ओक की लकड़ी से बनी एक पार्टी का भेंट की, जिसमें यीशु ख्रिस्त को भारत की कलीसिया से जुड़े 12 संतों से घिरा हुआ दिखाया गया है। पाटिका पर जिन संतों की तस्वीर है वे हैं प्रेरित संत थॉमस, प्रेरित संत बर्थोलोमियो, संत फ्रांसिस जेवियर, संत गोंजालो गार्सिया, संत जोसेफ वास, संत जॉन दी ब्रिटो, संत देव सहायम, कलकत्ता के संत तेरेसा, संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास चावरा, संत उफ्रेसिया और संत मरिया थ्रेसिया। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कहा, यह एक बहुत ही दोस्ताना मुलाकात थी और संत पापा हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: अमृत को कन्या करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
3: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मपुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापालियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज के मिलन से हम प्रेरितिक धर्म सिद्धांत Gaudium et Spes, खुशी और आशा पर अपना चिंतन शुरू करेंगे, जिसके माध्यम द्वितीय वैटिकन महासभा एक मूलभूत विषय वस्तु पर व्याख्या करने की चाह रखती है, विशेष रूप से कलिसिया और आधुनिक दुनिया के बीच का संबंध। संत पापा जॉन 13वें ने, जैसे कि 11 अक्टूबर 1962 को अपने प्रारंभिक संबोधन में विनाश के नबियों के मुद्दों के बारे में सवाल किया, जो धर्म के प्रति उत्साह से भरे होते हुए भी यह घोषित करते हैं कि हमारा समय, जब हम उसे अतीत की सदियों से तुलना करते हैं, पूर्ण रूपेण भ्रष्ट है, और वे अपने में ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उन्हें इतिहास से कुछ नहीं सीखना है। अतः धर्म सभा के आचार्यों का उत्तरदायित्व यह रहा, मानवीय घटनाओं की वर्तमान परिस्थिति में जहां मानवता एक नए क्रम की चीजों में प्रवेश करती जान पड़ती है, जहां हमें चाहिए कि हम बेहतर रूप में ईश्वर की दिव्य योजना पर चिंतन करें, जो मनुष्य के कार्यों द्वारा अपने समय में पूरा किए जाते हैं और बहुधा उनकी आशाओं से परे, और जो विवेक से हर चीज को सुव्यवस्थित करता है, यहाँ तक कि मानवीय विरोधाभावी क्रियाकलापों को भी, जो कलिसिया के हित में होती है। संत पापा लियो ने कहा कि 3 साल बाद Gaudium et Spes के प्रकाशन ने अपने आत्म मंथन में कलिसिया की एक महत्वपूर्ण प्रकृति को पहचाना, उसे अपनी प्रेरिताई की विशेषता स्वरूप वर्णन किया, अतः वह प्रेरिताई धर्म सिद्धांत स्वरूप परिभाषित की गई। हम इसे अनुभवहीन आशा के रूप में नहीं देख सकते हैं, बल्कि यह ख्रीस्त के रहस्य के प्रति एक नवीनतम निष्ठा है, जो शरीर धारण करते हुए हमारे जीवन को साझा करने का चुनाव करती है। अपने को सभी रूपों में अपने भाइयों के अनुरूप बना लिया और अपने ऊपर पापों का परिणाम ले सबों की मुक्ति हेतु मर गए। हमारी मानवता में उनकी यह सहभागिता वह मार्ग है जिसे ख्रीस्त कलिसिया को अनुसरण करने हेतु बुलाते हैं। अतः धर्म सभा का धर्म सिद्धांत Gaudium et Spes की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि कलिसिया वर्तमान समय के मानव की खुशियों और आशाओं, दुखों और चिंताओं को अपना बनाती है, विशेषकर वे जो दरिद्र हैं या किसी भी रूप में दुख से अपने को पीड़ित पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा,
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza.
1: यह हमारे लिए वह बुलावा है जहां हम सारे निष्क्रियता और उदासीनता का परित्याग करते हुए वर्तमान परिस्थिति की घटनाओं में, इतिहास और लोगों के जीवन में, विशेष करके उनके संग जो शीघ्रता और गहरे रूप में परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, अपने जीवन को साझा करते हैं। हम अपने में मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं, बल्कि हमें उन्हें अपने हृदय से सुनने की जरूरत है। अपने को उनके द्वारा चुनौती लेने और उनकी परिस्थितियों में शामिल करने की आवश्यकता है। यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से पोषित विश्वासियों से यह मांग की जाती है कि वे अपने भाई बहनों के बोझों को अपने में वहन करें, विशेषकर उनकी जो अन्याय, भेदभाव और हिंसा के शिकार हैं। वास्तव में केवल अपने जीवन को साझा करने और निष्ठा के माध्यम हम हर संभावित प्रत्युत्तर दे सकते हैं, सदैव इस बात की निश्चितता में कि जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने कहा, मानव की ओर हमारी निकटता हमारे लिए मार्ग को खोलता है, जहां हम घटनाओं के रहस्य को एक गहरे रूप में समझते हैं, और उसी तर्ज पर गाउडियम एट स्पेस इस बात की याद दिलाती है कि यह कलीसिया का निरंतर उत्तरदायित्व रहा है कि वह समय के संकेतों की जांच करे और उन्हें सुसमाचार के आलोक में परिभाषित करे। धर्म सभा का यह सिद्धांत इस भांति हमें इस बात की याद दिलाती है कि कलीसिया मन फिराव के मार्ग में निष्ठा से आगे बढ़ती है, इस बात का साक्ष्य देते हुए कि वह भौतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं है, बल्कि एकल लक्ष्य की खोज करती है, जो पवित्र आत्मा के संग मित्रता में ख्रीस्त के कार्यों को आगे बढ़ाना है, और यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में सच्चाई का साक्ष्य देने हेतु आए, बचाने हेतु, ना कि न्याय करने को, सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए। संत पापा लियो ने कहा कि वास्तव में यह एक नैतिक कार्य मात्र नहीं है। संत पापा फ्रांसिस इसकी याद दिलाते हुए कहते हैं कि कलीसिया के लिए गरीबों के लिए विकल्प मुख्य रूप से एक ईश शास्त्रीय वैचारिक रूप है, न कि सांस्कृतिक, सामाजिक, शास्त्रीय, राजनीतिक या दार्शनिक। हम उनमें ख्रीस्त को पाने हेतु बुलाए गए हैं, अपनी आवाज को उनके कारणों हेतु बुलंद करने को, इसके साथ ही उनसे मित्र बनने के लिए, उन्हें सुनने, उनकी बातों को घोषित करने और उस रहस्यात्मक विवेक का आलिंगन करने के लिए जिसे ईश्वर हमारे लिए उनके माध्यम साझा करना चाहते हैं। संत पापा ने कहा,
2: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà.
1: क्रिस्तीय एकता हमें निष्ठा में सच्चाई के संग संयुक्त होने को मदद करती और उसके साथ ही उन विरोधाभावों का खुलासा करती जो समकालीन दुनिया में हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति जो सदैव हमारे लिए कई संभावनाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन केवल कुछ लोगों के लिए, और जिसे मानव हमेशा अपने कल्याण के अधीन करने में सफल नहीं होता है, या समाज के नियमों की एक स्पष्ट समझ जो दिशा निर्देशन के संबंध में यद्यपि अनिश्चितताओं के संग चलती है, या पुनः धन, संपत्ति और आर्थिक शक्ति की प्रचुरता जो दुर्भाग्यवश आज जैसे कि धर्म सभा के दिनों में भी था, विश्व की एक बड़ी जनसंख्या को अब भी भूख और गरीबी में प्रताड़ित छोड़ देती है, या एक साझा सचेतना कि ब्रह्मांड का भविष्य खतरे में है, स्वार्थ में भौतिकता को छोड़ने की असमर्थता और यह भ्रम कि युद्ध अपने में शांति स्थापना का एक प्रभावकारी माध्यम है। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि बदलाव के इस बड़ी स्थिति में जो चिंताजनक असंतुलन को उत्पन्न करती है, कलीसिया मानव की सेवा करने और उनके हृदय में व्याप्त गहरे सवालों का स्वागत करने और उनकी चाहतों को सुनने हेतु बुलाई जाती है। ख्रीस्त जो मानव इतिहास के मुख्य केंद्र बिंदु और लक्ष्य हैं, इंगित करने को कही जाती है। अतः कलीसिया की हर परिस्थिति और हर स्तर में हमारे लिए ख्रीस्त के करुणामय दिव्य त्याग को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और अपने को क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना लिया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, खुशी और आशा गाउडियम एट स्पेस कलिस्सा का एक विशिष्ट गुण बने जो हमारे समय के नर और नारियों के निकट आते हुए सुसमाचार को घोषित करती और उसका साक्ष्य देती है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर रोम के कास्टल गंडोल्फो में स्थानीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे लौदातो सी उद्यान में यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर आज की धर्म विधि के लिए लिए गए पाठ हमें ईश्वर की कृति पर चिंतन करने हेतु आमंत्रित करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ हमें सृष्टि की सुंदरता और इसकी शक्ति पर चिंतन करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे हम सृष्टिकर्ता की प्रशंसा कर सकें। अपनी निगाहों को सृष्टिकर्ता के आश्चर्य की ओर उन्मुख किए हमारे लिए अग्नि, वायु और कलकल करते झरने या आकाश के तारों के प्रति विस्मय व्यक्त करना व्यर्थ होगा। संत पापा ने कहा कि स्तोत्र 18 हमें अपनी आँखों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए चिंतन करने का आह्वान करता है, जो ईश्वर की महिमा घोषित करते हैं, और नभ जो ईश्वर के हाथों से किए गए कार्यों को घोषित करते हैं। सारी सृष्टि हमारे लिए सृजनहार की महानता का बखान करती है। यह केवल तब होता है जब हम अपनी आँखों और हृदयों को इस एक महान रहस्य के लिए खुला रखते हैं। संत पापा ने कहा, आज की शाम जब हम ईश्वर के कार्यों के सामने उनके ऊपर चिंतन करने हेतु उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, हम सृष्टि के मौसम की शुरुआत करते हैं। 5 सप्ताह का यह समय जो हमारे लिए निष्ठा में आम घर की देखरेख हेतु प्रार्थना करने को समर्पित है, इस दिन और आने वाले सप्ताहों में, इसलिए आइए हम अपने को कुछ क्षणों के लिए दैनिक जीवन के कार्यों से अलग करें, जिससे हम उस गहरी एकता का रसास्वादन कर सकें जिसके हम सभी अंग हैं। हम अपने को उस शांति में स्थापित करें जहां कितनी ही शोर मानवीय कार्यों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे हम सृष्टि की मधुर आवाज को सुन सकें, जिसके माध्यम से ईश्वर सारी चीजों के निर्माता हमसे बातें करते हैं। सृष्टि के मौसम जिसकी शुरुआत आज कर रहे हैं 4 अक्टूबर को समाप्त होगी, जब हम संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं सालगिरह मनाएंगे। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व पत्र लौदातो सी प्रकाशित करते हुए उनसे एक विशेष प्रेरणा ली, जो बोर्गो को जीवन देती है जो हमारा स्वागत करता है। संत फ्रांसिस के साथ उस वैश्विक भाईचारे को जीने और बढ़ावा देने की अपनी निष्ठा को फिर से दोहराएं, जो दुनिया की देखभाल के कार्य से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। उधर मौत की सजा पाए कैदियों के बीच अपनी प्रेरिताई का वर्णन करने वाले अमेरिकी लोकधर्मी चैपलिन डाले रेसिनेल्ला की पुस्तक मृत्यु दंड की सजा पाए एक क्रिस्तीय अब अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। संत पापा फ्रांसिस, जिन्होंने इस किताब के इटालियन संस्करण की प्रस्तावना लिखी थी, इस काम को ईश्वर की दया का एक मास्टरपीस बताया। श्री डाले रेसिनेल्ला की किताब फ्लोरिडा के मौत की सजा पाए कैदियों के बीच 2 दशकों से ज्यादा की प्रेरितिक सेवा का सीधा ब्यौरा देती है। इसे 29 जुलाई को इंचेंडियो प्रेस ने इंग्लिश में प्रकाशित किया। इटालियन संस्करण को वाटिकन पब्लिशिंग हाउस ने अगस्त 2024 में संत पापा फ्रांसिस की प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया था। श्री रेसिनेल्ला ने एक गहरी आध्यात्मिक प्रगति के बाद एक वित्तीय वकील के रूप में सफल व्यवसाय को छोड़ा। उन्होंने फ्लोरिडा में फांसी का इंतजार कर रहे कैदियों के लिए 20 साल से ज्यादा समय तक कैथोलिक लोकधर्मी चैपलिन के तौर पर सेवा दी। 2021 में जीवन के लिए परमधर्म पीठीय संस्थान ने उनकी दशकों की सेवा के सम्मान में उन्हें अपना प्रथम जीवन रक्षक पुरस्कार दिया। किताब कैदियों से मुलाकात को दया के कामों में से एक के तौर पर याद करती है। यह बुलावा संतमती के सुसमाचार में ख्रीस्त के शब्दों से जुड़ा है, मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने आए।
उधर संयुक्त राष्ट्र में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने दो बयानों के जरिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को लागू करने की मांग की है। इनके लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हमें याद दिलाते हैं कि सिद्धांतों, हथियारों के जखीरे और रणनीति फायदे की सोच के पीछे ऐसे लोग हैं जिनकी गरिमा कभी भी सैन्य या राजनीतिक फायदों के आगे कम नहीं हो सकती। बढ़ते गुस्से वाले शब्द और काम डर के तर्क को बढ़ावा देते हैं, जबकि सिद्धांतों और हथियारों के जखीरे के पीछे ताकत की संस्कृति के शिकार लोगों के चेहरे खराब हो जाते हैं। उनकी गरिमा सैन्य और राजनीतिक फायदे के लिए बेच दी जाती है। यह स्थिति जिसे संयुक्त राष्ट्र में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने पहचाना है और जिसे कल 1 सितंबर को इसके प्रभारी महाधर्माध्यक्ष रॉबर्ट मर्फी के दो बयानों में बताया गया, समय पर और असरदार कार्यवाही की मांग करती है। अपने भाषण में 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की याद में उनकी खतरनाक विरासत को सख्ती से याद किया गया। हालांकि इससे यह आम धारणा और मजबूत नहीं हुई कि ज्यादा विनाशकारी हथियार बनाकर शांति नहीं रखी जा सकती। आज असल में हम परमाणु रोकथाम का नया सहारा और तेजी से बढ़ती परमाणु बयानबाजी देख रहे हैं, जो एकजुट अंतर्राष्ट्रीय नियम पर सवाल उठाती है। इस धारणा को संत पापा लियो 14वें ने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में बताया था, जिसमें परमाणु हथियारों के निर्माण को धीरे धीरे छोड़ने को, पूरी इंसानियत को खत्म करने में काबिल हथियारों से होने वाले खतरे को पहचानना बताया गया था। उधर ईरान पर अमेरिका के नए हमलों में अब तक 18 लोग मारे गए हैं और 68 लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ा हमला दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में हुआ। पहली बार वाशिंगटन ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो ईरानी तेल टैंकरों पर भी हमला किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: री फ्रेटेले सोरेले, बुनजोर्नो ए बेनवेनुती। Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज के मिलन से हम प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस, खुशी और आशा पर अपना

0: परिवर्तन शुरू करेंगे, जिसके माध्यम द्वितीय वैटिकन महासभा एक मूलभूत विषय वस्तु पर व्याख्या करने की चाह रखती है, विशेष रूप से कलीसिया और आधुनिक दुनिया के बीच का संबंध। संत पापा जॉन 13वें ने, जैसे कि 11 अक्टूबर 1962 को अपने प्रारंभिक संबोधन में विनाश के नबियों के मुद्दों के बारे में सवाल किया, जो धर्म के प्रति उत्साह से भरे होते हुए भी यह घोषित करते हैं कि हमारा समय, जब हम उसे अतीत की सदियों से तुलना करते हैं, पूर्ण रूपेण भ्रष्ट है, और वे अपने में ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उन्हें इतिहास से कुछ नहीं सीखना है। अतः धर्म सभा के आचार्यों का उत्तरदायित्व यह रहा, मानवीय घटनाओं की वर्तमान परिस्थिति में जहां मानवता एक नए क्रम की चीजों में प्रवेश करती जान पड़ती है, जहां हमें चाहिए कि हम बेहतर रूप में ईश्वर की दिव्य योजना पर चिंतन करें, जो मनुष्य के कार्यों द्वारा अपने समय में पूरा किए जाते हैं और बहुधा उनकी आशाओं से परे, और जो विवेक से हर चीज को सुव्यवस्थित करता है, यहाँ तक कि मानवीय विरोधाभावी क्रियाकलापों को भी, जो कलीसिया के हित में होती है। संत पापा लियो ने कहा कि 3 साल बाद गौडियम एट स्पेस के प्रकाशन ने अपने आत्म मंथन में कलीसिया की एक महत्वपूर्ण प्रकृति को पहचाना, उसे अपनी प्रेरिताई की विशेषता स्वरूप वर्णन किया। अतः वह प्रेरिताई धर्म सिद्धांत स्वरूप परिभाषित की गई। हम इसे अनुभवहीन आशा के रूप में नहीं देख सकते हैं, बल्कि यह ख्रीस्त के रहस्य के प्रति एक नवीनतम निष्ठा है, जो शरीर धारण करते हुए हमारे जीवन को साझा करने का चुनाव करती है। अपने को सभी रूपों में अपने भाइयों के अनुरूप बना लिया और अपने ऊपर पापों का परिणाम ले सबों की मुक्ति हेतु मर गए। हमारी मानवता में उनकी यह सहभागिता वह मार्ग है जिसे ख्रीस्त कलीसिया को अनुसरण करने हेतु बुलाते हैं। अतः धर्म सभा का धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि कलीसिया वर्तमान समय के मानव की खुशियों और आशाओं, दुखों और चिंताओं को अपना बनाती है, विशेषकर वे जो दरिद्र हैं या किसी भी रूप में दुख से अपने को पीड़ित पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा,
1: è una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza.
0: यह हमारे लिए वह बुलावा है जहां हम सारे निष्क्रियता और उदासीनता का परित्याग करते हुए वर्तमान परिस्थिति की घटनाओं में, इतिहास और लोगों के जीवन में, विशेष करके उनके संग जो शीघ्रता और गहरे रूप में परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, अपने जीवन को साझा करते हैं। हम अपने में मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं, बल्कि हमें उन्हें अपने हृदय से सुनने की जरूरत है, अपने को उनके द्वारा चुनौती लेने और उनकी परिस्थितियों में शामिल करने की आवश्यकता है। यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से पोषित विश्वासियों से यह मांग की जाती है कि वे अपने भाई बहनों के बोझों को अपने में वहन करें, विशेषकर उनकी जो अन्याय, भेदभाव और हिंसा के शिकार हैं। वास्तव में केवल अपने जीवन को साझा करने और निष्ठा के माध्यम हम हर संभावित प्रत्युत्तर दे सकते हैं, सदैव इस बात की निश्चितता में कि जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने कहा, मानव की ओर हमारी निकटता हमारे लिए मार्ग को खोलता है, जहां हम घटनाओं के रहस्य को एक गहरे रूप में समझते हैं, और उसी तर्ज पर गौडियम एट स्पेस इस बात की याद दिलाती है कि यह कलीसिया का निरंतर उत्तरदायित्व रहा है कि वह समय के संकेतों की जांच करे और उन्हें सुसमाचार के आलोक में परिभाषित करे। धर्म सभा का यह सिद्धांत इस भांति हमें इस बात की याद दिलाती है कि कलीसिया मन फिराव के मार्ग में निष्ठा से आगे बढ़ती है, इस बात का साक्ष्य देते हुए कि वह भौतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं है, बल्कि एकल लक्ष्य की खोज करती है, जो पवित्र आत्मा के संग मित्रता में ख्रीस्त के कार्यों को आगे बढ़ाना है, और यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में सच्चाई का साक्ष्य देने हेतु आए, बचाने हेतु, ना कि न्याय करने को, सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए। संत पापा लियो ने कहा कि वास्तव में यह एक नैतिक कार्य मात्र नहीं है। संत पापा फ्रांसिस इसकी याद दिलाते हुए कहते हैं कि कलीसिया के लिए गरीबों के लिए विकल्प मुख्य रूप से एक ईश शास्त्रीय वैचारिक रूप है, न कि सांस्कृतिक, सामाजिक, शास्त्रीय, राजनीतिक या दार्शनिक। हम उनमें ख्रीस्त को पाने हेतु बुलाए गए हैं, अपनी आवाज को उनके कारणों हेतु बुलंद करने को, इसके साथ ही उनसे मित्र बनने के लिए, उन्हें सुनने, उनकी बातों को घोषित करने और उस रहस्यात्मक विवेक का आलिंगन करने के लिए जिसे ईश्वर हमारे लिए उनके माध्यम साझा करना चाहते हैं। संत पापा ने कहा,
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà.
0: क्रिस्तीय एकता हमें निष्ठा में सच्चाई के संग संयुक्त होने को मदद करती और उसके साथ ही उन विरोधाभावों का खुलासा करती जो समकालीन दुनिया में हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति जो सदैव हमारे लिए कई संभावनाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन केवल कुछ लोगों के लिए, और जिसे मानव हमेशा अपने कल्याण के अधीन करने में सफल नहीं होता है, या समाज के नियमों की एक स्पष्ट समझ जो दिशा निर्देशन के संबंध में यद्यपि अनिश्चितताओं के संग चलती है, या पुनः धन संपत्ति और आर्थिक शक्ति की प्रचुरता जो दुर्भाग्यवश आज जैसे कि धर्म सभा के दिनों में भी था, विश्व की एक बड़ी जनसंख्या को अब भी भूख और गरीबी में प्रताड़ित छोड़ देती है, या एक साझा सचेतना कि ब्रह्मांड का भविष्य खतरे में है, स्वार्थ में भौतिकता को छोड़ने की असमर्थता और यह भ्रम कि युद्ध अपने में शांति स्थापना का एक प्रभावकारी माध्यम है। संत पापा लियो चौदवी ने कहा कि बदलाव के इस बड़ी स्थिति में जो चिंताजनक असंतुलन को उत्पन्न करती है, कलीसिया मानव की सेवा करने और उनके हृदय में व्याप्त गहरे सवालों का स्वागत करने और उनकी चाहतों को सुनने हेतु बुलाई जाती है। ख्रीस्त जो मानव इतिहास के मुख्य केंद्र बिंदु और लक्ष्य हैं, इंगित करने को कही जाती है। अतः कलीसिया की हर परिस्थिति और हर स्तर में हमारे लिए ख्रीस्त के करुणामय दिव्य त्याग को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और अपने को क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना लिया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, खुशी और आशा गाउडियम एट स्पेस कलीसिया का एक विशिष्ट गुण बने जो हमारे समय के नर और नारियों के निकट आते हुए सुसमाचार को घोषित करती और उसका साक्ष्य देती है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

गए पाठ हमें ईश्वर की कृति पर चिंतन करने हेतु आमंत्रित करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ हमें सृष्टि की सुंदरता और इसकी शक्ति पर चिंतन करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे हम सृष्टिकर्ता की प्रशंसा कर सकें। अपनी निगाहों को सृष्टिकर्ता के आश्चर्य की ओर उन्मुख किए हमारे लिए अग्नि, वायु और कलकल करते झरने या आकाश के तारों के प्रति विस्मय व्यक्त करना व्यर्थ होगा। संत पापा ने कहा कि स्तोत्र 18 हमें अपनी आँखों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए चिंतन करने का आह्वान करता है, जो ईश्वर की महिमा घोषित करते हैं, और नभ जो ईश्वर के हाथों से किए गए कार्यों को घोषित करते हैं। सारी सृष्टि हमारे लिए सृजनहार की महानता का बखान करती है। यह केवल तब होता है जब हम अपनी आँखों और हृदयों को इस एक महान रहस्य के लिए खुला रखते हैं। संत पापा ने कहा, आज की शाम जब हम ईश्वर के कार्यों के सामने उनके ऊपर चिंतन करने हेतु उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, हम सृष्टि के मौसम की शुरुआत करते हैं। 5 सप्ताह का यह समय जो हमारे लिए निष्ठा में आम घर की देखरेख हेतु प्रार्थना करने को समर्पित है, इस दिन और आने वाले सप्ताहों में। इसलिए आइए हम अपने को कुछ क्षणों के लिए दैनिक जीवन के कार्यों से अलग करें, जिससे हम उस गहरी एकता का रसास्वादन कर सकें जिसके हम सभी अंग हैं। हम अपने को उस शांति में स्थापित करें जहां कितनी ही शोर मानवीय कार्यों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे हम सृष्टि की मधुर आवाज को सुन सकें, जिसके माध्यम से ईश्वर सारी चीजों के निर्माता हमसे बातें करते हैं। सृष्टि के मौसम जिसकी शुरुआत आज कर रहे हैं 4 अक्टूबर को समाप्त होगी, जब हम संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं सालगिरह मनाएंगे। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व पत्र लौदातो सी प्रकाशित करते हुए उनसे एक विशेष प्रेरणा ली, जो बोर्गो को जीवन देती है, जो हमारा स्वागत करता है। संत फ्रांसिस के साथ उस वैश्विक भाईचारे को जीने और बढ़ावा देने की अपनी निष्ठा को फिर से दोहराएं, जो दुनिया की देखभाल के कार्य से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। उधर मौत की सजा पाए कैदियों के बीच अपनी प्रेरिताई का वर्णन करने वाले अमेरिकी लोकधर्मी चैपलिन डाले रेसिनेल्ला की पुस्तक मृत्यु दंड की सजा पाए एक क्रिस्तिय अब अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। संत पापा फ्रांसिस, जिन्होंने इस किताब के इटालियन संस्करण की प्रस्तावना लिखी थी, इस काम को ईश्वर की दया का एक मास्टरपीस बताया। श्री डाले रेसिनेल्ला की किताब फ्लोरिडा के मौत की सजा पाए कैदियों के बीच 2 दशकों से ज्यादा की प्रेरितिक सेवा का सीधा ब्यौरा देती है। इसे 29 जुलाई को इंचेंडियो प्रेस ने इंग्लिश में प्रकाशित किया। इटालियन संस्करण को वाटिकन पब्लिशिंग हाउस ने अगस्त 2024 में संत पापा फ्रांसिस की प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया था। श्री रेसिनेल्ला ने एक गहरी आध्यात्मिक प्रगति के बाद एक वित्तीय वकील के रूप में सफल व्यवसाय को छोड़ा। उन्होंने फ्लोरिडा में फांसी का इंतजार कर रहे कैदियों के लिए 20 साल से ज्यादा समय तक कैथोलिक लोकधर्मी चैपलिन के तौर पर सेवा दी। 2021 में जीवन के लिए परमधर्म पीठ संस्थान ने उनकी दशकों की सेवा के सम्मान में उन्हें अपना प्रथम जीवन रक्षक पुरस्कार दिया। किताब कैदियों से मुलाकात को दया के कामों में से एक के तौर पर याद करती है। यह बुलावा संतमती के सुसमाचार में क्रिस्त के शब्दों से जुड़ा है, मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने आए। उधर संयुक्त राष्ट्र में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने 2 बयानों के जरिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को लागू करने की मांग की है। इनके लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हमें याद दिलाते हैं कि सिद्धांतों, हथियारों के जखीरे और रणनीति फायदे की सोच के पीछे ऐसे लोग हैं जिनकी गरिमा कभी भी सैन्य या राजनीतिक फायदों के आगे कम नहीं हो सकती। बढ़ते गुस्से वाले शब्द और काम डर के तर्क को बढ़ावा देते हैं, जबकि सिद्धांतों और हथियारों के जखीरे के पीछे ताकत की संस्कृति के शिकार लोगों के चेहरे खराब हो जाते हैं। उनकी गरिमा सैन्य और राजनीतिक फायदे के लिए बेच दी जाती है।
यह स्थिति जिसे संयुक्त राष्ट्र में परम धर्म पीठ के स्थायी पर

यवेचक मिशन ने पहचाना है और जिसे कल 1 सितंबर को इसके प्रभारी महाधर्माध्यक्ष रॉबर्ट मर्फी के दो बयानों में बताया गया, समय पर और असरदार कार्यवाही की मांग करती है। अपने भाषण में 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की याद में उनकी खतरनाक विरासत को सख्ती से याद किया गया। हालांकि इससे यह आम धारणा और मजबूत नहीं हुई कि ज्यादा विनाशकारी हथियार बनाकर शांति नहीं रखी जा सकती। आज असल में हम परमाणु रोकथाम का नया सहारा और तेजी से बढ़ती परमाणु बयानबाजी देख रहे हैं, जो एकजुट अंतर्राष्ट्रीय नियम पर सवाल उठाती है। इस धारणा को संत पापा लियो 14वें ने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में बताया था, जिसमें परमाणु हथियारों के निर्माण को धीरे धीरे छोड़ने को, पूरी इंसानियत को खत्म करने में काबिल हथियारों से होने वाले खतरे को पहचानना बताया गया था। उधर ईरान पर अमेरिका के नए हमलों में अब तक 18 लोग मारे गए हैं और 68 लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ा हमला दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में हुआ। पहली बार वाशिंगटन ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो ईरानी तेल टैंकरों पर भी हमला किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।